ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णवीर में सड़क धंसने से यातायात बाधित, ट्रैफिक पुलिस ने की वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की अपील। भोटेकोशी बाढ़ में मारे गए 794 लोगों के शव बरामद, 2502 लोग अब भी लापता। भोटेकोशी बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए त्रिशूली ए में तकनीकी टीम तैनात। बाढ़ से प्रभावित नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में नेपाल टेलीकॉम की मोबाइल सेवा शुरू। और साइप्रस में 260 यात्रियों को ले जा रहा पानी का जहाज हुआ दुर्घटनाग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। पृथ्वी राजमार्ग के धादिंग स्थित कृष्णभीर में सड़क धंसने के बाद काठमांडू से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ से सड़क का निचला हिस्सा कट जाने के कारण करीब 20 मीटर लंबा सड़क का आधे से अधिक हिस्सा धंस गया है। इससे आज सुबह से पृथ्वी राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। बता दें कि नदी में पानी का बहाव बढ़ने से गजुरी ग्रामीण नगर पालिका के चियोदी में 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बड़े वाहन काठमांडू बाय रोड 9-20 से पालों भैंसे मार्ग से जा सकेंगे, जबकि छोटे वाहनों और माइक्रो बस के लिए फरपिंग मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सभी से वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने का आग्रह किया है। सड़क विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़क का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी है। अधिकारियों ने यात्रियों और वाहन चालकों से सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। रसुआ में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 794 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार बाढ़ के कारण 2502 लोग अब भी लापता हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 8730 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लापता लोगों में नेपाल पुलिस, नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस के जवानों के अलावा जल विद्युत परियोजनाओं के कर्मचारी, विदेशी नागरिक और पर्यटक भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है, साथ ही जोखिम वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ के कारण अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। भोटेकोशी में आई बाढ़ के कारण मलबे से ढके त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग का मुहाना मिल गया है। सुरंग विशेषज्ञ और सांसद इंजीनियर श्रीराम न्योपाने के अनुसार वर्टिकल होल से करीब 8 मीटर नीचे और अपस्ट्रीम क्षेत्र में सुरंग का मुहाना मिला है। सुरंग का मुहाना मिलने के बाद अंदर फंसे तकनीकी कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के बचाव अभियान को तेज करने की तैयारी की जा रही है। बचाव के लिए जरूरी उपकरण हेलीकॉप्टर के जरिए परियोजना स्थल तक पहुंचाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण सुरंग का प्रवेश मार्ग कीचड़, मिट्टी और पत्थरों से भर गया है, जिससे बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। नेपाली सेना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। परियोजना के भूमिगत विद्युत गृह में काम कर रहे करीब 40 से 45 तकनीकी कर्मचारी और अन्य कर्मियों के सुरंग में फंसे होने का अनुमान है। परराष्ट्र मंत्री शशिर खनाल ने बताया है कि भोटेकोशी बाढ़ के कारण चीन के केरुंग में फंसे नेपाली नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग से नेपाल लाया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के लिए आज विदुर नगरपालिका 1 के ढोंगे पहुंचे

0: टेलीकॉम के अनुसार आज जिन साइटों को संचालित किया गया है उनमें रसुवा जिले के नेपाल चीन सीमा पर स्थित रसुवा बॉर्डर साइट के अलावा अपर सेंजेन छापथोके जिपजिपे और गतलांग साइट शामिल हैं। इसी तरह नुआकोट के चार घरे और चार घरे मुलाबारी बीटीएस साइट भी फिर से संचालित हो गई हैं। प्रवक्ता डॉक्टर कमल लामिछाने ने बताया कि रसुवा बॉर्डर बीटीएस साइट के माध्यम से नेपाल चीन सीमा नाका टिमुरे रसुवा बॉर्डर कॉरिडोर और सैफ्रोवेसिस से भोटेकोशी कॉरिडोर तक संचार सेवा बहाल हो गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14#डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। नेपाल टेलीकॉम ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और आसपास के ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त वॉइस डेटा और एसएमएस सुविधा को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले भारत 14 गते तक मुफ्त वॉइस कॉल प्रतिदिन 2 GB डेटा और 50 SMS की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। राहत वितरण और बचाव कार्य को सुचारू बनाने के लिए कंपनी ने इस सुविधा को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रवक्ता कमल लामिछाने ने इसकी जानकारी दी। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के साथ शवों को एकत्र करना सरकार की प्राथमिकता में है। भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी बचाव कार्य, राहत सामग्री वितरण तथा शवों को एकत्र करने सहित सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा ने बताया कि शवों को एकत्र करने के लिए 2 डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर संचालित किए गए हैं। रसुवा की भोटेकोशी नदी में बुधवार सुबह आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और राहत के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने $10 मिलियन के बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की इच्छा जताई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर धर्मराज उप्रेती के साथ आज प्राधिकरण के कार्यालय में हुई मुलाकात में यूएई एड की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार होने की जानकारी दी। प्राधिकरण के अनुसार यूएई एड की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक सामग्री के बारे में प्राधिकरण से जानकारी ली। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख उप्रेती ने बताया कि बैठक में अस्थायी पुल, पानी शुद्धिकरण तथा सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित सामग्री, बड़े परिवारों के लिए आवश्यक तंबू, चार्जिंग सुविधा वाले पोर्टेबल लाइट, पोर्टेबल जनरेटर, सोलर पैनल, सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी सहित अन्य सामग्री की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी साइप्रस में आज एक पैसेंजर नाव के पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद 23 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 237 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कुछ यात्रियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। स्वघोषित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री उनान उस्तेल ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट में हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव अभियान जारी है। तुर्की के गृह मंत्रालय के मुताबिक हादसे के वक्त नाव में 260 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। नाव कायरेनिया पोर्ट से करीब 4 समुद्री मील दूर समंदर में पलट गई। समुद्री यातायात की निगरानी करने वाली मरीन ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक नाव आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:58 पर उत्तरी साइप्रस के बंदरगाह से रवाना हुई थी। गौरतलब है कि उत्तरी साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश नहीं है। ये क्षेत्र सन 1974 में तुर्की के सैन्य हस्तक्षेप के बाद तुर्की के नियंत्रण में है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में सड़क धंसने से यातायात बाधित। ट्रैफिक पुलिस ने की वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की अपील। भोटेकोशी बाढ़ में मारे गए 794 लोगों के शव बरामद। 2502 लोग अब भी लापता। भोटेकोशी बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए त्रिशूली 3 AMA

0: की टीम तैनात। बाढ़ से प्रभावित नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में नेपाल टेलीकॉम की मोबाइल सेवा शुरू। और साइप्रस में 260 यात्रियों को ले जा रहा पानी का जहाज हुआ दुर्घटनाग्रस्त। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।